अच्छा ऋषभ जा परचा के सी इज बी दो पैके सुरत चाल ले बाबा द के सुरत चाल सीरो सारो से के पपचा आ तो दिक के से सा के सुरत पे दी बड़ी अस पे पोस्ट के सुरत चाल